0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2470 मोबाइल नम्बर 98465-56238।
2: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज।

0: चॉइस एफएम 90.4 MHz।
1: मेरी सांसों से तुम शिकवा करते हो, छुप छुप के चाहत का सौदा करते हो। तुम ही सोचो ये कैसी मजबूरी है, मुझ में रह के मुझसे पर्दा करते हो।

पराई रस्म की जंजीर तोड़कर आजा, पराई रस्म की जंजीर तोड़कर आजा, मेरे लिए तू जमाने को छोड़कर आजा।

क्या पगले सावन की बरसात का रोना, पतझड़ की रुत से क्या पगले सावन की बरसात का रोना, जब देखो दीवानापन में दिन का रोना रात का रोना, जो निर्मोही प्यार न जाने प्यार में उसके ओ दीवाने, जिससे देखो रो देते हो अशकों की बारात का रोना, रूठ के जाने वाला मितवा लौट के एक दिन खुद आएगा, रूठ के जाने वाला मितवा लौट के एक दिन खुद आएगा, छोड़ो भी ये नीर बहाना भूली बिसरी बात का रोना।

चलनु आज नहीं से बच के तू निकल ले। जय माता के भक्त है वादों के सख्त है, आकाश से हम आए तन मन के हम है सच्चे, मरती है

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज़।
1: चॉइस एफएम टाइम चेक
2: अहिले साँझको 6 बजेको छ।
1: इट्स 6 पीएम।